डिप्लोमा उपक्रम उपलब्ध DLC डिप्लोमा इन साइबर लॉ DTL डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ DLL एंड LW डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर संपर्क नवजीवन विधि महाविद्यालय शिवशक्ति चौक 34 स्कीम सिडको

का तुमसे कल भी सामना कल तो जानोगे दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे होगा तुमसे कल भी